club alright हल्का क्यूट हल्का नॉटी चुमा सबले भने जा लाउरे मैं भरती हूँ ना मैले दुख संग ऐसी थेरे ट्रैकल करे अहिले रैप गेम को भाई सके सर्जियो मा

हलों जो कामी बेला बोलो घर पल्लो घर घरमा परमा मेला वन पाखामा जता ततै पलाइसक्यो डाली।